आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के घेर स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिंस दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नताइज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सॉप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सॉप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स चुनाव है एतमाद का। सो मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस 03459232860 03500

और जनाब मैसेज तरफ तसू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम गुल मामूता संग तबियत पे संग गए तबियत पे सम तेज बुखार नजला जुकाम अकोर के एक और वाला खैर दे जमा टूल मीनवाल तो सलाम औ सलाम स्पेशल सलाम मी तासुता आई एम लाइव आ खान फ्रॉम बटक रॉन्ग लाइबे पखेरा ले ये लाइबे

Welcome back. You are listening Dabang Radio FM. You are listening Aman Radio Batagram. भाई आए करें तो भाई मैसेज किया करें, आप कॉल करें, ठीक है ना भाई? किससे याद किया? सलाम सा संगी नादिया गुल जगन्नाथ हर युगम बदल खोर में दत्त सलाम करी, नो टेंशन, जिंदाबाद, मुबारक शाह, पाइंदाबाद।

सिर्फ लीज मुमला ब्यूटी क्रीम के ग्लूटा सीरम वरवाचोए खैर दे लग गए ग्रान के खूब पमुंग बांधे गोल्ड क्रीम नदी रस दा गोल्ड क्रीम चिकम नवी दरगली ग्लूटा वाला दे इस्तेमाल के हम दा नवी चिकम दरगली दी ओके जी दा रवाख ले ब्या मात हुआ है खा दा नवी क्रीम रागली दी पागी बाने ली कलीम दी खा ओके ओके वालकाम वालकाम शाची वालकाम वेलकम शाची शो वेरी नाइस उज़मा इस्लामाबो मल मैसेज आखिर सलाम संगे मरियम यहाँ मरियम कैसे है भाई ठीक है

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: अमन है,
1: प्यार की एक दुनिया लेकर,
2: मोहब्बत समेट कर
3: आपकी जिंदगी में।
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।